0: और सफलता भरे सुस्ता दैनिक उपभोग की वस्तु होंगी घी तेल तरकारी सभी धंधा महंग सरकारी सेवा छोड़े बढ़ रही 3 महीना में 4 से 18 जना कर्मचारी को राजीनामा
1: यूक्रेन में आक्रमण शुरू कर सर्वसाधारण यात्रा भोगे राष्ट्र संघ को भाई अमेरिकी मध्यप्रति निर्वाचन का लगे प्रत्यक्ष अग्रिम मतदान शुरू भारत और भूटान बीच ऊर्जा परियोजना पर समझौता
0: 9 विश्व एशियन गेम्स अंतर्गत महिला क्रिकेट को सेमीफाइनल समीकरण पूरा फाइनल प्रवेश का लगी पाकिस्तान और श्रीलंका

habitada, comme ça, on y est, on peut se donner de la socialisation extraordinaire, peut-être pour un soutien sur le monde. इसके लिए किसी का समुदाय वैज्ञानिक कार्यक्रम साझा आवाज प्रसारण में सबसे प्रयास करना है।

0: शिखर बुनियानी जिसने उत्तर बनाई लाइक अथवा कदम रक्षण शास्त्र
1: चाहिए
0: चीज मानी

ऐसा उनके पास के लिए अपने बटैया लगाई कर दी है जिससे बटैया तो सब लड़ाई वापस हो सकती है लेकिन हमें तो मामले जब मरी है और पूरी जिंदा आती है मतलब क्या किस तरह की टीम मतलब जिंदा रहती है।

समर्थन के सपनों की मुख्यों की संदेश भेजे पटक विश्व माध्यम गुरुक संक्रमित देश मान्यता भक्ति संस्था जिला स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी में जनता माध्यमिक विद्यालय कठाल प्रथम पोटे कोशी बारी प्रभावित का लगी बासरी नगर पालिक में 180 क्विंटल चावल साढ़े 10 लाख बराबर को नगद राहत संकलन अजय जारी सरकार द्वारा तीन देश का राजदूत का लगी सिफारिश अहिले बिहान 7 बजेको नेपाली भाषाको हाम्रो सन्देश यति नै बेलुका 5 बजे मौसम बुलेटिन लिएर आउने नै छौ। तबसम्मका लागि प्राविधिक साथी गौरी शङ्करलाई धन्यवाद दिँदै म पुष्पा बिदा हुन्छु। नमस्कार।

0: क्योंकि यह ऐसा था कि चार रास्ता यह शिक्षित हुए रास्ते नहीं हो तो यह फिर वो बंद बढ़ा चीज हो तो फिर बंद करते हो
1: रेडियो को बाहर रखते हो तो मैं साथ में

0: हर चीज के किसान के लाग सब चीज का बना देते ये कतरे हमारे के नाले का कतरे पानी का हमारा
1: Thank you.

अच्छे अवसर पर जो काम करना चाहते हो। तीसरा, जब तक वो अवश्य अनुसार नहीं बना सके

0: काम में मैं जीवन अपने घर में बन जाएगी इस कारण मैं प्रेम करती हूँ। आज बोले अभी शंकर मंदिर में जी आपको आगे बढ़कर परेशान करने लगी
1: अपनी शक्ति न करो
0: कुछ करो हमें आपको मंदिर रखते छोड़ा जाओ तो अक्सर मुझे अभी सुधार शंकर मंदिर शुक्रवार को लगते ना प्रसाद रखना सरकार से प्रश्न इसलिए काम चाहिए जो बोल रहे हैं तो हो सकेगा तो पश्चिम में जो स्थान में पावर जो जिला जी होता है स्थानीय स्तर जिला जी होता है जगह के बाद दक्षिण करता है

संख्या मात्रा टेक्नोलॉजी तथा रोग नियंत्रण महाशाखा राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केंद्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल डब्ल्यू डब्ल्यू एफ नेपालका साथै नेपाल पूर्वाधार स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सरकारी अनुसन्धान केन्द्र संगठन

0: रोज पूरा समाचार
1: विश्वासी संगठन का अनुसार नेपाल में 30% वयस्क जनसंख्या उच्च रक्तचाप को जोखिम में छन्। प्रस्तुति तथा तैयारी खाना जंक फूड तथा डिब्बा का खाना में सोडियम धीरे हुए मृत्यु रोग को जोखिम बढ़ाने गर्च। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एवटा व्यक्ति ने दैनिक 5 ग्राम समय नून सेवन कर उपयुक्त होने सलाह दिया।
0: नियमित रूप में हिडुल शारीरिक व्यायाम ने मोटो स्वस्थ बनाने मदद कर
1: संतुलित भोजन पर्याप्त निद्रा सकारात्मक सोच एवं चिंता तनाव मुक्त रहना मोटो रोग बचना सकता।
0: 40 वर्ष कटे नियमित स्वास्थ्य जांच कर
1: चीनी पदार्थ मछा मासु कम खाऊ खाना में सागपात और फल फूल खाऊ
0: मद्यपान धूम्रपान सेवन न करो
1: स्वस्थ रहो सुखमय जीवन
2: द्वारा

समझ में आता है कि पांचवें गुरु जरूर समझ लेंगे, अंकित सुनता है कि करना बड़ा बड़ा

0: God.
1: सुरक्षा सुरक्षा साइबर छापा है पच्चीस नंबर के लिए किए चाहिए।

0: primero bueno es que se haga de proteínas PNL, barriga de ganglia. Aș căuta la mixta gătării de tine dacă e că mă poate vine gătării de gătă vreau la gări, măsru citiati, măsru citiati. Încă capă trechi. Mi-e că nu mă bine bără, am regineci, am învecheci. छुट्टी कर रखते हैं हमने हमने हमने दस वर्ष बचे दस वर्ष बचे गई थी हम घर का हम जाने तो सत्रह कर दी बारह कुंटल आलू करा बच्चे तो बारह कुंटल के पैसे जो है वो हमने जल अब साग सब्जी भी अच्छी तरह बीस हजार पच्चीस हजार के कच्चे साग भी अंदर ली एक हजार टमाटर के गमले बेच ली गोभी बेच ली पांच सौ सत्रह बता दिए हमने इस्तेमाल कर लिया ये सब मैं सब कुछ कह जाती हमने अब मुझे अपन दगलाने में लीड लेके चेक लेके काम करती चक्कर आठ हजार के ले आती बस तक आठ हजार बजे थी मैं तो ठीक है मैं अच्छा क्या कहते हैं कि घर के चल रहे आप घर में अपन जगह जमीन पर घर के लिए मैं चल रहे थे तीन तरकारी मतलब देव दर्शी घर खर्चा कर रहे थे उसी को अन्य उठाए थे शुरू मध्यमा पानी पर संभावना हो सकती है
1: Itu asalnya berbagai macam berita tentang kasus

0: Sundays from the Akasat here, Kanda, Kumasita, Sankas, Aram, Vijida, Kumas Sundays, Vida, Mukim, Kesan, Sarkas, Yusuf, Jose, Ayako, Tadi, Kalak, Paskari, Noma, Yetla, Azadi, Sachana, Matsarita, Absanta, Pas, Samita, Kasana, Sarma, Paskari, Noma, Sabarma, Deep Portland, Sutan, Vijida, Sitsa, Panadi, Delta, Kormasa, Vitekma, Olipa, Hadigarma, Hadika, दायित्व सुनिश्चित कर सुझा वो आईवीएन मासनमा भारतीय राष्ट्रीय मंत्री खाना विद्युत पर पूरी है नंबर चैती आपका समाचार बिन से
1: रसोई को भोजन के लिए लगाए गए पैमाने से प्रभावित नागरिक कल्याण तस्करी नगर पालिका नौ में एक लाख 48,370 रूपए नगर सुनी तथा 800 मकई संतुलन विकास तस्करी नगर

0: करके ज्यादा खर्चे के कहने का परिणाम करके उनको सवा साधना कोई मंत्री आज तक नहीं सुधे
1: हमारे साल दस्तर अंतरिम जानकारी हुए परमा

0: उस आयुक्त हर वर्तमान को लोग दिखाई और इसमें बेसिक घर में घटना है कि दिल्ली में बच्चों स्वस्थ यात्रा और प्रांतना की कई जानकारी हो सकती है। इससे सुनिए आधिकारिक जानकारी को लेकर विश्वास होश अपना कार्य सुरक्षित रखो पूरे संकल्प आगे तुरंत मोदी जी को सुरक्षा करने जानकारी दी होश आपत्कालीन अवस्था में कमल तरह नेपाल प्रहरी एक सुन्दर सुन्दर वार्ड 11-13 मानव बीच विघन युद्ध कुटुम्ब 11-77 तथा बाढ़ हेल्पलाइन 10-9-8 पर कॉल करोस
1: सुरक्षित
0: हामी मिलेर मात्र रोक्न सक्छौ।

सूचना संग्रह अध्यक्ष प्रयोग गुरु प्रयोग नक्शा तथा संबंधित कार्य विधि

0: संदर्भ नियमित रूप में आयरन कैल्शियम आयरन सुखाई स्वस्थ बताई सुरक्षित परिवार
1: रेडियो गुरुद्वारा चलचित्र जारी संदेश।

सुनते हैं, पर उसे पांचवें भूमि गलत नहीं है। उनकी सुनता दिखे तो ना बड़ा मगर

0: का समय अध्यापक कार्य को पूर्ण प्रयोग नक्शा तथा संबंधित कार्य विधि पूर्णकालय में पठाने के द्वारा जानकारी कराई
1: नगर पालिक 5 पूर्ण कार्य।

0: भाई इस वर्ष आपको ये विभाग का अपनी बेटी होने का आश्रय नहीं की जाओ एक छोटी संस्थाओं में हमारे पहली लाइन होगा इस वर्ष में अपनी विभाग में बाल विवाह हो जिसको विवाह कई कार्रवाई हो विवाह घर में एक कार्रवाई कार्रवाई नहीं होता
1: बाल विवाह कानूनी अपराध हो इसलिए आज ही बाटे हो

0: देता कुछ कराएंगे वो सब कुछ आप दिखा के नहीं रहता
1: दिखा होगी वो तो पता भी कभी ध्यान लगाए वो कब बताएगा दिखा सा पर तो विषय वस्तु एक थोड़ा खराब लगेगा जो खास नहीं करा किसान का अधिक पैसे से
0: ঠিক আছে

0: sin saber que la casa es en cada comida, porque él hizo por los árboles, junto a la capuza que no nos da de paz.
1: Quizás la nago se hizo caer para que la cura la capuza que no cana para que la capuza la regla, a ti caer por pies, y se le va a ir Nepal, dar o a ti matraca, a que se le dan caer y le se quita. नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियंत्रण महाशाखा राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्वसंघ अनुसन्धान केन्द्र सम्बद्धको सहभागीमा रोटरी इन्टरनेसनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मित्रका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश